0: स्ट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
1: मम्मी गर्मी भयो के चिसो पिउ न पिउ मलाई चिसो उठाउ हटे
2: हले
1: गर्मी मनाया फ्रेश फ्रेश फ्रेश

0: साह्रै मिठो कुरो सम्झायो हो साइला।
1: अब अहिले थरी थरीका चिसो थरी थरीका कोला खोइ बता गयो धारा बता गयो कोला।
0: त्यो बोतलको पानी न त पुरा कहाँ भिज्ने न त पुरा तिर्खै मेटिने।